जिन राम कहे कोई अल्लाह आख लगे कोई वाहेगुरु आख लगे कोई राम राम आखी जावे सब उस प्रभु दे नाम ने सतगुरां ने बाणी विच उस प्रभु नु किन्ने नामा नाल पकारिया है रब एक है प्रभु परमात्मा एक है ते ए दुनिया बखरे बखरे नामा नाल पकार दी है भी किसी नाम नाल पकार लवो बस जेड़ा भी उसका नाम लवेगा

कोई हो जाए नहीं जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे तिना तरिया होवे। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शियां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे हैं।

अर पुत्र ने जन्म लिया है ते पुत्र जन्म तो ही पिंगला है, हाथां ते पैरां तो हीण है। समा बीतिया मां गुजर गई, होर समा बीतिया ते इसदा पिता भी गुजर गया। सारे लोग आखन लगे भी ये बच्चा बड़ा ही कर्महीन है, हर कोई नफरत करन लगा। भैन भरा रिश्तेदार सारे बोल कबोल बोल दे, जदों दा तू जन्म लिया है ते घर विच काटा ही काटा है, तुर नहीं सकदा, हथा ना कुछ कर नहीं सकदा, कोई तेनू किन्ना चिर खुआवेगा। रोज बोल कबोल बोल दे ने तो बड़ा ही कर्महीन है। अज इस बच्चे कोलो सुनिया ना गया, हर रोज दियां गल्लां सुन के अज तंग आया है।

बीतया, रात बीती, फिर दिन आया। उस मालक दी बख्शिश होई, आज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने। अचानक बच्चे वल निगाह पई, आखण लगे, ओए बच्चिया, इन्ना उदास ते नाराज क्यों बैठा है? प्रभु दा नाम जपया कर, प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखां दूर हो जांदे ने। राम राम जपया कर, राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखां सारियां ही मुक जांदियां ने। नारद जी इन्नी गल करके तुर गए ने। बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच बसा लिया, सिमरन विच जुड़ गया। ते की सोझी मिलती है, किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा। राम राम दी जाग सवासा नाल जुड़ गई, किन्ने महीने बैठा रहा। अज किन्ने महीनिया बाद इस दिया अखां खुलियां ते देखो नाम दिया बरकतां की तक रहा है। इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए, हुण ते पिंगला नहीं दे रहा। जदों इसने कुछ तकिया ना, ए प्रभु तू किड्डा दयालु है, तू किड्डा कृपालू है। सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है, अज ते तेरियां बख्शिशां, अज ते तेरे

बेसवाद है। महापुरुष बाहर खलोते, बरसात हो रही है, सर्दी दी रुत है, कंब रहे नी, ते गनका नी दरवाजा खोलिया, बाबा जी अंदर लांघ आओ, अंदर लांघ आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते ने, नस के अंदर गई, सतपुरख आए ने सेवा कर लवा, नस के गई ते दूध का गिलास लेके आई, बाबा जी छक लवो। महापुरुष आखन लगे, बच्ची तेरा काम की है, की किरत कर दी है? बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है, मैं कर्मां दी मारी बेसवा। आखन लगे, बच्ची आ तेरे हत्थां दा दुध असां ने नहीं पीना। इन्नी गल आखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए, क्यों नहीं पीना, तेरा कर्म माड़ा, जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां ए दुध दा गलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नू तारण वास्ते आंदे ने, बाबा जी तुहाडी हर एक गल मनांगी। महापुरुषां दे कोल एक पिंजरे

राम बोलेंगी इवी बोलेगा, इनू राम राम सुखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावा। महापुरुषां ने दुध सकिया, हुण महापुरुषां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां नूं। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इसलिए सदा वास्ते खुल गए। ते ए है प्रभु दे नाम दी महिमा, सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने। जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन, नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह।

हे भाई, बेअर्थ बहस करन लई वेदां किताबां दे हवाले दे के एवें फजूल गल्लां करन नाल दिल दा सहम दूर नहीं हुंदा। तुसीं अपने मन नूं पलक भर वी टिका लो तां तुहानूं सभना विच रब वसदा दिस पएगा। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बात बकाहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूर्त ना है। बेसमझ लोग दूसरे धर्मां दीआं पुस्तकां पढ़ पढ़ के कि इन्हां विच जो लिखिया है वह झूठ है, खुश हो के बहस कर रहे हन, पर सदा थिर रहण वाला परमात्मा सभना जीआं विच वस रहा है। ना तो वह सतमें आसमान ते बैठा है ते ना ही कृष्ण की मूर्ति विच है, वह तो सर्व व्यापक है। आसमान म्याने लहंग दरिया, गुसल करदन भूत कर फकर दायम, लाए चश्मे जह तहां मौजूद। सतमें आसमान विच बैठा समझण दी थां ते हे भाई, ओ प्रभु रूप दरिया तां अंते करन विच लहरां मार रहा है, तू उस विच इशनान करना सी। सो सदा उस दी बंदगी कर, ज्ञान रूपी ऐनक ला के वेख, ओ हर थां मौजूद है। अल्लाह पाकं पाक है, शक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का ओ करै जाने सोए। इस गल विच कोई शक नहीं कि परमात्मा सब तो पवित्र हस्ती है। मैं इस गल विच तां शक करां जे उस वर्गा कोई होर भी होवे तां। हे कबीर, ओ मनुख ही ये गल समझ सकता है जिसनू वाहिगुरु समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हथ विच है, इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे।

खालसा जी आज सब तो पहला अमृत दे दाते सरबंस दानी कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बख्शिया फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के वाहे।

सिमरन सेवा कुर्बानी ते वीरता दियां दातां नाल माला माल होए अपने सिख नूं मेरे कलगीधर पातशाह कुछ होर बख्श के पूरन पुरश बनाउणा चाहुंदे सन। आप दा इह विचार सी कि गुरु नानक देव जी दे बनाए सिख नूं किवें दूजियां नालों वखरा कीता जावे। जिस कमजोर भाईचारे चों इह तत कढ़िया गया सी किते समा पा के फिर उसे विच ना मिल जावे। पंजवें पातशाह ने मर्द नूं शहादत दा जाम पीण दी जाच सिखाई सी किते इह जाच भुलाना बैठे। मीरी पीरी दे मालक ने मीरी ते पीरी कठियां कीतियां सन किते चिर पा के फिर वखो वख ना हो जान। आखिर कुछ अजिहा करना चाहिदा है जिस नाल इह सब कुछ स्थिर रह सके। इह धारना धार के हजूर ने सारियां संगतां नूं इह हुक्मनामे भेज दिते कि विसाखी ते भारी दीवान सजेगा जिस विच दूर नेड़े तों संगतां हुम हुमा के पहुंचन। 1699 दी विसाखी नेड़े आई तां एक दिन पहला ही आनंदपुर साहिब विच पंडाल संगतां नाल खचा खच भर गया। पंडाल दे एक पासे वल कुछ खास ढंग दा तख्त बनाया गया। तख्त दे पिछले पासे दोहरे पर्दियां वाला तंबू सी जिस दा बुहा उस थां खुलदा सी जिथे हजूर ने खलो के संगतां नूं दर्शन देने सन। संगतां दियां नजरां उधरे ही लगियां होईयां सन कि तंबू दा पर्दा हिलिया ते महाराज रवां रवी तख्त दे उत्ते आ खड़े हो गए। हजूर दे बाहर आउंदियां ही खुशी दे जयकारियां नाल पंडाल गूंज उठिया, पर महाराज दा अनोखा रूप वेख के चारे पासे चुप वरत गई। महाराज दे सज्जे हाथ विच श्री साहिब चमक रही सी अते हवा विच जरा जरा कंबदी तलवार वल वेख के हजारां दिल कंब रहे सन। अंत महाराज ने बड़ी गर्जवी आवाज विच कुछ कहा। ओ जोश परे बोल जो महाराज संगतां नूं कह रहे हन उन्हां बोलां नूं अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दियां बीबियां दा ढाडी जथा आपदी सेवा विच है।

अधी रात का समय अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे भाई साहब भाई गुरदास जी लिख दे रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी पर जिस वेले राणी नू राजे ने नहीं रखिया तो भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी है। अद्धी रात का समय राणी किधर चली। राजा उठिया महल दे अंदर राणी नू लभण लग गए। सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना भी मन विच वरत गई है। तो प्यारी सास संगत राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउन लगे मंदे भी आउन लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है पर अधी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना ए तां मैनूं धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया नींद आ गई। दिन चढ़िया जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दित्ती राणीए उठ। राणी उठी राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल किया राणी ते कि राणी सच दस तू राती किथे गई से। अधी रात तू गैर हाजिर सी किथे गई सी। राणी सोचन लगी जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी। आई साहब जी लिखदे साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग भी जांदी सी महापुरुषां दी संगत रात नूं जांदी सी। रोज डेली नितनेम बनिया होया सी चाहे मीं होवे चाहे हनेरी कैसा भी वैदर क्यों ना होवे राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी तां हो सकदा है राजा सत्संग तों रोक देवे पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग। मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी वाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले पर मैं सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता। ए प्यार दी निशानी है ए प्यार है। राणी सोच राजे ने फिर किया राणी बोल तू राते किथे गई से। जे झूठ बोलदी हां तां पति परमेश्वर है स्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति है। जे सच बोलदी हां तां सत्संग तू विछड़दी। पर राणी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग है। जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर नहीं रह सकती सत्संगी सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता।

अनसा दफार करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चियां वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी तो आओ हम अनसा दफार

जब लोनी भाग मिलार उठे तब लो पढ़ते फिरते बहुत आयो कनखोर समुद्र में मूड उठे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और कोई संकट भी आएगा तो 84 लख जूर तू बच जाएगा तो प्यार न सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हलम कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अज गुरु की संतान की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैवी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नी गंगा जी असि आप ही अपने सिर पे संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुकम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तो तुसी भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर भी उसे गागर जल्दी रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरै जाते अज पंजवा गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो तन गुरु रात दस गुरु तुरै जाता है सिखा दे दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतरते अद्धी रात दस गंगा जी सुनो ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावे उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगतों प्यार भी किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

आयो दापर कहिन मुरार अंश किर थार ठिकियो उगुर सहन को राज अभय भगत जन जियो अल जुग परवार